0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओ, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
0: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
0: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
0: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
2: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत

0: धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम होर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें ओराम भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक। और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सीइंग विदाउट सीइंग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshankla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is something soft. A flower.
3: Yes. But what flower is it? Smell it.

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा।
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ, सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था।

0: पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है, फिर भी समझ न आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, शेखी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर डलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।

0: बाद बंदर ने सिर पर डलिया रखकर तार दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
2: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो।
2: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है।
1: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर

0: छोटा सा छप्पर डाल लेते तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता।
1: मेरे आगे जीव चलाती हैं? क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आँख मिलाती है।
2: मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
0: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी, कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
1: क्या मतलब?
0: ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो?
3: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो, आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो।
4: शाबाश,
3: कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ।
4: हाँ?
3: बंदर ने गुस्से में आकर बया का घोंसला ही तोड़ दिया, तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं, और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना?

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज एक नया दिन है, एक नया शो है। 90s के दौरान बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में फैमिली, प्यार, ट्रेडिशन और कल्चर पे बना करती थी। उस टाइम पर बॉलीवुड वेंट ग्लोबल एंड रीच्ड वाइडर ऑडियंस, जिसकी स्टोरी लाइंस बहुत ही चैलेंजिंग होती थी और तब का वो समय था जब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स की एंट्री हुई। तो आज का शो उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाम होगा जिन्होंने अपने वर्सिटैलिटी और ग्रेस के साथ स्टीरियोटाइप्स तोड़े और बॉलीवुड हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। और ग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई दिमाग में आता है तो वो है माधुरी दीक्षित। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन को शुरुआत में फिल्म्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो तो माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेना चाहती थी, उनके पास डिग्री है भी, और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। ऐसे माधुरी ने कथक डांस भी सीखा हुआ है, 8 साल की ट्रेनिंग ली है, नो वंडर इसीलिए उन्हें डांसिंग क्वीन बुलाया जाता है। 1984 का वो समय था जब अबोध फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म तो चली नहीं, लेकिन माधुरी जी को क्रिटिक्स से बहुत तारीफें मिली और फिर क्या था, उनकी तकदीर की गाड़ी निकल पड़ी और एक टाइम आया जब वो 3-4 फिल्में एक ही साल में रिलीज करती थी। आपको पता है जब हम आपके हैं कौन फिल्म आई थी ना, उस समय माधुरी की फीस सलमान खान की फीस से 2.75 करोड़ ज्यादा थी। वाह, मतलब एक्ट्रेसेस का भी एक जमाना हुआ करता था। खैर आइए इसी बात पर शो की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के गाने के साथ, लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, मौसम का जादू। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज ये 90s की डिवास पे स्पेशल एडिशन मेरे आने रुचि के साथ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि, आपके साथ वेलकम बैक। आज के इस रेट्रो बॉलीवुड शो में मैं बातें कर रही हूं 90s के कुछ ऐसी डिवास के बारे में जिनके बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी। 90s में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और अपनी यूनिब्राउ पॉपुलर कर ली थी इन्होंने, जो अपने चेयरफुल, आउटस्पोकन, हैप्पी गो लकी नेचर के लिए जानी जाती थी। ऑफ कोर्स आप पहचान ही गए हैं, मैं बात कर रही हूँ काजोल की। काजोल की फिल्मी दुनिया में एंट्री 1992 की बेखुदी फिल्म के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें पहली कमर्शियल सक्सेस बाजीगर से मिली जब उन्हें पहली बार शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन पेयर किया गया था। और फिर क्या होना था, काजोल ने जब भी शाहरुख खान के साथ में फिल्में की हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं। वैसे काजोल के लिए सबसे टफ किरदार गुप्त फिल्म का था, क्योंकि उन्हें एक मीन ग्रे शेड का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था। लेकिन इसी रोल के कारण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन अ फिल्म फेयर फॉर अ नेगेटिव रोल। जहां दूसरी एक्ट्रेसेस के लिंकअप की खबरें सामने आती रहती थी, वहीं काजोल इन सबसे काफी दूर थी। कंट्रोवर्सीज इन्हें छू भी नहीं पाती थी। इनफैक्ट गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग अजय देवगन और किसी को खानो खान खबर भी नहीं हुई थी। उनकी शादी भी अजय देवगन से ही हुई विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज। लोगों ने जरूर इनके अनलाइकली पेयरिंग को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म जो था वो इन्हें दिया था, लेकिन इनके प्यार को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे काजोल का लकी नंबर 5 है, इसीलिए 1995 में उनकी 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सभी ब्लॉकबस्टर चाहे ना रही हो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आज तक भी हम याद करते हैं। तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ लता मंगेशकर जी की आवाज में। हर लड़की ने अपने टीनेज में कभी ना कभी तो इस गाने पर डांस किया ही है। मैं हूँ रुचि, आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में, या यूं कहें कि डीवाज के बारे में आज यहां पर मैं और आप मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। और जब हम डीवाज की बात करें तो श्रीदेवी जी का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीदेवी जी को दिल से याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला की भी अगर कोई इंस्पिरेशन थी बॉलीवुड में तो वो श्रीदेवी जी ही थी। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख, सलमान तक ऑलमोस्ट सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया था। फिल्मों के साथ फैशन में भी वो काफी पॉपुलर थी। उनका आइकॉनिक चांदनी लुक मतलब फैशन का सीन ही चेंज कर गया था इंडिया में। सुना है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने चांदनी के लिए पहले रेखा जी को ऑफर भेजा था, लेकिन सिलसिला फिल्म में उन्होंने चांदनी नाम का कैरेक्टर पहले ही कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया और खुद श्रीदेवी को उन्होंने ही रेकमेंड किया था इस रोल के लिए। और बताइए, ये जो एक कैरेक्टर था ये श्रीदेवी जी के लिए जैसे एक बेंचमार्क बन गया था। एक बार यश जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे और रास्तों पर सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। इट वॉज देन जब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बदलाव लेकर के आना है और अब थोड़ा सा रोमांटिक फिल्में भी, रोमांटिक कहानियां भी लोगों को सुनानी है, दिखानी है। एंड दैट इज वेन उनके दिमाग में चांदनी फिल्म का ख्याल आया था। इस फिल्म की इतनी बात हो रही है तो चलिए इसी फिल्म का गाना आपको सुनाऊंगी, श्रीदेवी जी का गाना ऑफ कोर्स, 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट डीवाज। लेकिन उसके पहले लम्हे फिल्म से हरिहरन और लता दीदी की आवाज में अगला गाना कभी मैं कहूँ। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो जारी है। मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की दीवाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। श्रीदेवी जी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के दो गाने अभी आपने सुने, और अब मैं 90s में सबसे क्विक सक्सेस जिन्हें मिली उनके बारे में बात करूंगी। नाम है इनका जूही चावला। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का क्राउन जीता था। वैसे आप जानते हैं जूही भी कथक में ट्रेन थी, और वो भी 3 साल तक की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन सिंगर भी रही है ये। लेकिन जूही इन सब के कारण नहीं, बल्कि अपने कॉमिक रोल्स और चीयरफुल पर्सोना के लिए बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिर भी एक बार इनके और आमिर खान के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला पर एक खतरनाक प्रैंक, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। जूही को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराज हो गई थी, और अगले दिन शूट पर ही नहीं आई, जिसके कारण उस दिन बहुत सारा लॉस हुआ था प्रोडक्शन टीम को। और आमिर खान काफी नाराज भी हो गए थे कि मैंने तो मजाक किया था, इसके ऊपर जूही इतना क्यों बुरा मान गई। कुछ दिन के बाद में इन दोनों के बीच में लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी, एंड ऑब्वियसली शूटिंग फिर से शुरू हुई। दैट्स हाउ हम ये फिल्म जो है इन दोनों के बीच की वो देख भी पाए थे, इश्क, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। वैसे जूही की आमिर और शाहरुख दोनों के ही साथ में पेयरिंग काफी पॉपुलर थी, जिसके लिए उन्हें काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन शाहरुख खान के साथ जब ये डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी प्राग में, उस समय शूटिंग के दौरान जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। काफ़ी हैवी लॉसेस हुए थे इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को, क्योंकि शूटिंग रोक दी गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था तो वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख ने खुद कह दिया था कि जो भी लॉसेस हैं वो मेरी फीस में से काट दो, लेकिन इस फिल्म को जारी रखो। आई थिंक दैट इज़ वाई ही इज़ द किंग ऑफ बॉलीवुड। पर एनी वे, जूही चावला की बात हो ही रही है, 90s की एक बहुत ही बेहतरीन डीवा, तो जूही चावला और शाहरुख खान की ही फिल्म डर से सुपरहिट गाना आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज़ में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डांस में अव्वल थी। अगर माधुरी और जूही कथक ट्रेन डांसर्स थे तो मनीषा कोइराला भरतनाट्यम और मणिपुरी ट्रेन डांसर। मनीषा अपनी टाइमलेस क्लासिक ब्यूटी और एलिगेंस के लिए पॉपुलर थी। एक्टिंग के पहले उन्हें डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। मनीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ नेपाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 1991 की फिल्म सौदागर के साथ में, और वो उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी।

वैसे शादी से पहले मनीषा वॉज क्वाइट पॉपुलर फॉर हर टर्बुलेंट अफेयर्स. इनफैक्ट अपने सौदागर फिल्म के को स्टार विवेक मुश्रान के साथ अफेयर की खबरें भी इनकी सामने आई थी. लेकिन बाद में इन दोनों का ये जो अफेयर था ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया. लेकिन क्या आपको पता है मनीषा कोइराला अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमिटमेंट फोबिक एक्ट्रेस मानी जाती हैं. बहुत डर लगता था इन्हें रिलेशनशिप्स में घुसने से. चाहे ये अपनी रियल लाइफ में ऐसी थी लेकिन फिल्मों में तो इन्होंने काफी रोमांटिक रोल्स भी निभाए हैं. फिलहाल मैं आपको मनीषा कोइराला की उस फिल्म से गाना सुनाती हूँ जिसे वो ऑलमोस्ट खो चुकी थी. मैं बात कर रही हूँ 1942 अ लव स्टोरी की. इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में मनीषा फेल हो गई थी लेकिन उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी से काफी रिक्वेस्ट करके दूसरा स्क्रीन टेस्ट करवाया था और तब जाकर वो सिलेक्ट हुई थी. आई मीन आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस फिल्म विदाउट मनीषा कोइराला. चलिए कुमार सानू की आवाज में ये गाना सेलिब्रेटिंग 90s की डीवा मनीषा कोइराला वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर. मैं रुचि आपके साथ.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डिवाज के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, और जब 90s की कुछ खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात हो, डिवाज की बात हो और ऐश्वर्या राय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हम दिल दे चुके, सनम, गुरु, देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज़ का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस एक्चुअली, सभी लड़कियों के लिए सेट किया है। लेकिन क्या आप ऐश्वर्या की एजलेस ब्यूटी का राज जानते हैं? चाहे वो कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडोर्स क्यों ना करती हों, लेकिन ऐश्वर्या राय आज तक भी सिर्फ आयुर्वेदिक ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पर। वैसे ऐश्वर्या खुद भी एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनका बचपन से सपना था कि या तो वो डॉक्टर बने या फिर एक आर्किटेक्ट बने। बताओ बचपन में हम क्या क्या सपने देखते हैं और बड़े होकर के क्या बन जाते हैं। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचिए अगर ऐश्वर्या राय डॉक्टर बनती और आप ऐश्वर्या राय के पास में जाते पेशेंट बन करके, तो आप तो अपना दिल दे करके आ जाते वहां पर, तो अलग दिल के मरीज बन जाते आप, चाहे कोई और बीमारी लेकर के गए होते।

ऐश्वर्या राय की बात यहाँ पर हो रही है तो और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण जी का गाना सुनाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये गाना लेकर के आई हूँ। मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से है ये गाना, सुनिएगा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

कुमार शानू जी गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। शानू जी ने गायकी में अपना खुद का एक अलग अंदाज बनाए रखा हुआ है, इसीलिए आज भी उनके चाहने वाले उनके गानों को सुनकर अपना दिल थाम लेते हैं। उनको पहला ब्रेक जगजीत सी ने दिया था, उन्होंने ही शानू जी को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया था। 1989 में आई फिल्म जादूगर के लिए कुमार शानू ने एक गीत भी गाया था। क्या आपको पता है कि एक दिन में 28 यानी कि 28 गाने रिकॉर्ड करवाने वाले वह एकमात्र गायक है? हाँ, ऐसा शायद कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने 20,000 गाने गाए हैं। कुमार शानू का आज के दौर में संगीत के बारे में कहना है कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम हो जा रहा है और उसकी जगह शोर ले रहा है। और अगर जहाँ पे मेलोडी गानों की बातें हो रही है, वहाँ पे ये गाना सुनना तो बनता है। ये गाना है साजन फिल्म का, मेरा दिल भी कितना पागल है। आई नो मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं, पर शानू जी तो बेहद ही अच्छे सिंगर है। तो चलो ये गाना सुन लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस गाने के लिए भी उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। चलो सुनते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है।

कुमार शानू जी मानते हैं कि आज के संगीत में मेलोडी सुर ताल कहीं गुम हो रहे हैं और उसकी जगह शोर ले रहा है। यदि यही वजह है कि आज के अधिकतर गीत यादगार प्रतीत नहीं होते, उनकी चाहत हमेशा रही कि काश उन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ कोई गाना गाया होता। बहुत समय से वह बंगाली फिल्मों में सक्रिय है और हिंदी फिल्मों में कम। 2009 में उनके अभूतपूर्व संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और देश के चौथे सबसे सम्मानित नागरिक के तौर पर मनोनीत भी हुए। फिल्म राउडी राठौर में गीत चमक छल्लो छल छबीली के साथ दोबारा वापसी की। फिर सन 2014 में रिलीज यशराज फिल्म निर्मित दम लगा के हैशा फिल्म में गीत दर्द करारा गाया। और जैसे कि आपको पता है, ये फिल्म का ये सॉन्ग बेहद ही मस्त, जैसा लगता नहीं कि पुराने गाने और पुराना माहौल जैसे फिर से जिंदा हो गया। तो ये गाना तो सुनना बनता है नहीं, तो चलो सुन लेते हैं दम लगा के हैशा फिल्म से दर्द करारा सॉन्ग, जिसको गाया है कुमार शानू जी ने।

कुमार शानू को अधिकतर 1919 के दशक की फिल्मों में दिए गए पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। इसमें फिल्म जुर्म कैसे भूल सकते हैं, जिसका गाना आज भी कोई भी मैरिज पार्टी हो, मैरिज फंक्शन हो या तो प्राइवेट वैलेंटाइन पार्टी हो, इसमें ज़रूर बजाया जाता है। कुछ ऐसे गाने नहीं होते जो भले ही पुराने हो जाए लेकिन दिल के बेहद ही करीब रहते हैं। उनका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही एक गाना है जुर्म फिल्म से, जब कोई बात बिगड़ जाए। ये गाना जब आया था तब से लेकर अब तक की जनरेशन को बेहद ही पसंदीदा है। आप ये गाना हर बार सुनते होंगे। जब ये गाना बजता है तो दिल में कुछ कुछ ज़रूर होता है। तो चलो हम आगे यही सॉन्ग आपको सुना देते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, इस सॉन्ग के बाद हम वापस से यही मिलेंगे। रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

आगे आपने ये सॉन्ग सुना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग से अगर तुम अपने दिल की बात शेयर किसी से ना कर सको तो सिर्फ ये सॉन्ग बजा देना। आई नो कि सामने वाला इंसान आपकी बात ज़रूर समझ जाएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग से उनको बहुत सारी सफलता मिली, लेकिन उनको सुपरस्टार बना दिया आशिकी फिल्म के गानों ने। इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो कि एक कीर्तिमान है। उन्होंने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं। और अब यहाँ पे अगर आशिकी मूवी की बात हो रही है, आशिकी मूवी से जब कुमार शानू जी सुपरस्टार बन गए तो उसी मूवी का एक गाना तो बनता है ना। चलो तो आशिकी मूवी का ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन। आई नो कि मैं उस ज़माने से नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जब ये गाना आया होगा ना, तब लोग अपने दिल की बात इसी गाने से जाहिर करते होंगे, क्योंकि इस मूवी में इतने सारे गाने हैं और सारे के सारे आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड ज़रूर होंगे। तो चलो आज हम ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन, और उसके बाद वापस से मिलेंगे रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि के साथ।

वैसे तो कुमार शानू जी ने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं, जैसे कि आनंद मिलिंद, जतिन ललित और अनु मलिक। लेकिन वो नदीम श्रवण है जिनके साथ उनकी सफलता की शुरुआत हुई और उन्हें सर्वाधिक कामयाबी प्राप्त हुई। हाँ, मैंने आपको जो भी सॉन्ग अभी सुनाए, अब तेरे बिन सोचेंगे तुम्हें प्यार, मेरा दिल भी कितना पागल है, इस तीनों सॉन्ग में संगीत निर्देशक किया है नदीम श्रवण जी ने। क्या आपको ये पता है कि 2000 में आई हुई हम दिल दे चुके सनम मूवी में गाए हुए एक सॉन्ग की वजह से उनको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार मिला था, और इस मूवी का वो सॉन्ग था आंखों की गुस्ताखिया। हाँ, वही गुस्ताखिया जहाँ पे सलमान खान और ऐश्वर्या राय आंखों से बड़ी ही गुस्ताखिया कर रहे हैं। अगर इस गाने की बात हो रही है तो आई नो कि आपको ये गाना सुनने का बहुत ही दिल हो रहा होगा। तो कोई नहीं, रेडियो पे आपके लिए ये सॉन्ग जरूर बजेगा। इस सॉन्ग के बाद हम फिर से मिलेंगे ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

कुमार शानू जी ने वैसे तो अपने संगीत करियर में बहुत सारे गाने गाए, सोनी म्यूजिक के लिए, टी सीरीज के लिए, टिप्स और सारे गाने

माँ के लिए। लेकिन आपने ये गाना जरूर सुना होगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वापस से मैं कह देती हूँ कि आई नो कि मैं सुर की इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर ये गाना कभी भी बजता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और दौर में पहुँच गए हैं, लाइक सपनों की दुनिया में कहीं खो गए हैं। 1942 में लव स्टोरी मूवी आई थी और इस मूवी में संगीत निर्देशक किया था आर.डी. बर्मन जी ने, हाँ, और जिसमें ये सॉन्ग लिखा था जावेद अख्तर जी ने, इसको गाया था कुमार शानू जी ने। जब भी ये गाना बजता है ना तो आज भी यंग जनरेशन एकदम झूम जाती है, और कभी भी अगर उनको प्यार होता है ना तो ये गाना ज़रूर सुनते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और इस गाने को सुनने के बाद यार पता नहीं कि कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ इस गाने के बारे में, तो आई नो कि आपको भी ये गाना सुनना होगा, तो चलो सुन ही लेते हैं ये गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

अब मेरा जाने का समय हो चुका है। हाँ, समय तो हो चुका है और आज तो कुआं शानू जी के सॉन्ग सुनकर मेरा दिल झूम रहा है। दिल धड़कन धड़कन पता है ना, धड़कन एकदम जोरों से धड़कने लगी है। अगर धड़कन की बात हो रही है तो फिल्म धड़कन का ये सॉन्ग तो आपने सुना होगा ना। तुम दिल के धड़कन में, हाँ हाँ हाँ यही सॉन्ग। ये सॉन्ग भी गाया है कुमार शानू जी ने। अब मैं जा ही रही हूँ तो आपको ये सॉन्ग तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि फिल्म धड़कन से अगर ये सॉन्ग नहीं सुना कुमार शानू जी का तो क्या ही सुना। चलो इस सॉन्ग को सुन लो। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी, ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM पर। चलो मस्त रहना, व्यस्त रहना और सुनते रहना।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों परेशान हो? जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। मैं हूँ आपकी आरजे रुचा। मस्त रहे, व्यस्त रहे, सुनते रहे रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

0: है नरम,
1: मोरा दिल है नरम, मोरा दिल है नरम।
0: ओ मांग ले जो मांगना हो प्यार की कसम,
2: तू भी

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

शहर नो अवाज एटले 91.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम अवाज ने वाचा आपतु एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

0: लगती मेरे बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

खेत में जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: मक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 एफएम रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है